सरयू नदी के तट पर बसी सुंदर अवधपुरी रामलला की जन्मभूमि। दशरथ नंदन राम जी ने इसी नगरी में अपनी मानव सुलभ बाल लीलाएं की। श्री राम दशानन पर विजय प्राप्त कर जब अयोध्या नगरी पुनः पधारे तो ये जानकर अयोध्या वासियों के आनंद की सीमा न रही कि तारनहार श्री राम अब सदा के लिए यही निवास करेंगे। भक्त जनों और संत जनों की प्रार्थनाओं से रामलला के सर से हर प्रकार की अलाबला टल गई।

अयोध्या में हर्ष और उल्लास के साथ श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गईं, परंतु विधि का विधान कुछ और था। राजा दशरथ ने माता कैकेयी को 3 मांगें पूरी करने का वचन दिया था। विधि की प्रेरणा से माता कैकेयी ने राम के 14 वर्ष वनवास की मांग की। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचनु न जाई। और पिता के वचन को निभाने के लिए राम जी चले वनवास।

अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: महाराज की
1: जय।
0: श्री राम जन्म भूमि की
1: जय।
0: श्री कृष्ण जन्म भूमि की
1: जय।
0: श्री काशी विश्वनाथ की
1: जय।
0: श्री अयोध्या धाम की
1: जय।
0: श्री सरयू महारानी के जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के समस्त पूर्वाचार्यों के सर्वसंत वैष्णव भगवान के सत्य सनातन।

ಜ್ಞಾನಮಂಜರಿಂ ಸಮರ್ಪಯ ಮಿನಮಸ್. ಭವ ಬೀಜಾನಾಮರ್ಜನ ಸಂಪದಾನಾಂ.

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

श्री गोविंद गीता अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण प्राकृत गुणों पर आधारित 3 प्रकार की श्रद्धा का वर्णन करते हैं।

श्री भगवान आहार तप यज्ञ एवं दान आदि का सतो रजो एवं तमोगुण के आधार पर विश्लेषण करते हैं। वे कहते हैं

श्री गोविंद, ओम, तत्, सत नामक तीन ब्रह्म सूचक शब्दों के महत्व को बतलाते हुए समस्त यज्ञ, तप, दान आदि में इन शब्दों के उच्चारण की अनिवार्यता को स्पष्ट करते हैं।

कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट माखन चोरी। आस पड़ोस के घरों में जाते थे माखन चुराने। एक गोपी बड़ी चालाक थी। उसने क्या किया था कि जहां माखन की मटकी टांगी थी उसी रस्सी से एक घंटी भी बांध रखी कि कन्हैया आएंगे, मटकी फोड़ेंगे, घंटी बजेगी, हम उनको पकड़ लेंगे। कन्हैया पहुंचे, अपने साथियों के साथ देखा कि घंटी भी बंधी हुई, समझ गए गोपी बड़ी चालाक। तो घंटी को आदेश दिया कि तुम बोलना नहीं, चुप रहना, मेरे साथियों को माखन खाना है। मटकी फोड़ी गई, सब साथियों ने खूब माखन खाया और घंटी चुप। जब सब खा चुके तो कन्हैया ने सोचा थोड़ा मैं भी खा लूं, वो तो सबको खिला के खाते थे। जैसे ही जरा सा माखन मुख से लगाया तो घंटी जोर जोर से बजने लगी। कन्हैया ने कहा, ये क्या, जब मेरे साथी खा रहे थे तो तुम चुप थी, मैंने जरा सा माखन खाया तुमने बजना शुरू कर दिया। घंटी बोली, हमारे भगवान भोग लगा रहे हो, तुम कैसे चुप रह सकते हैं? हमारा तो काम ही यही है कि जब भगवान भोग लगाए तो हम सारे संसार को बताएं कि अब प्रसाद ले लो, भगवान ने भोग लगा लिया। बस आ गई गोपी, पकड़ लिया, ले गई यशोदा के पास। यशोदा अचानक पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया क्या? और कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया,

दूसरा तर्क दिया, कहने लगे माँ जरा सोचो माखन कैसे खा सकता हूँ, इतना छोटा सा बालक, छोटे छोटे हाथ पैर मेरे, और माखन कहाँ टांग के रखते हैं। मैया मोरी

इशारा किया, कन्हैया क्यों बातें बना रहे हो, ये जो मुंह में माखन लगा है कैसे लग गए? कन्हैया ने सोचा तो फंस गए, भूल हो गई, तुरंत उत्तर दिया।

अब कन्हैया ने माँ की खुशामद, माँ की तारीफ शुरू की। माँ प्रसन्न हो जाएगी, क्षमा कर देगी।

विशेष बात हो गई। कन्हैया का गुस्सा भी सह लिया माँ ने। अंत में कन्हैया ने ऐसी बात कह दी कोई माँ नहीं सुन सकती। आंखों में आंसू आ गए कन्हैया के। कहने लगे, माँ मैं समझ गया बात क्या, ये माखन की बात नहीं है। ये माखन का तो तुमने बहाना लिया, तुम्हारे मन में क्या है मैं जान गया। कहने लगे,

0: कल्पना कीजिए क्या दृश्य है। कन्हैया और मैया दोनों गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो मां मान गई, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। चमत्कार देखे शब्दों का, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार किया। अभी तक मां कह रही है,
1: कन्हैया तैं नहीं माखन खायो

एक बार आपकी जोरदार तालियां हमारे सब साथी कलाकारों के लिए। साइड रिदम पर मधुर एके, गिटार पर हिमांशु बिजुधर, संतूर पर पीयूष पवार, तबले पर यामा सरशार, और जिन्होंने डांस प्रस्तुत किया संगीता रॉय। आज के अनाउंसर

और हमारे आपके जीवन में, प्रत्येक के जीवन में बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक जो कुछ होता है वो इन चार पंक्तियों में उतार दिया है।

हमारे यहां नदियां हमेशा से पवित्र रूप में देखी जाती रही हैं। वेदों की ऋचाएं तो यहां तक कहती हैं कि जो व्यक्ति गिरी आश्रय या नदी संगम पर ध्यान मनन करता है उसे ही पवित्र बुद्धि प्राप्त होती है। इसी गहरे विश्वास के चलते आर्यों की प्राचीन सभ्यता सात नदियों के आसपास विकसित हुई और उस प्रदेश को सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। धीरे धीरे ये आर्यजन अपनी सभ्यता का विस्तार करते हुए महाकौशल और मालवा के पठारों की गहरी घाटियों में भी उतरते चले गए, जहां उन्होंने पहली बार

मत्स्य पुराण के अनुसार गंगा कनखल तक, सरस्वती कुरुक्षेत्र तक, किंतु नर्मदा तो अमरकंटक के सघन जंगलों से होकर खंडात की खाड़ी तक एक सी पवित्र है। इतनी पवित्र कि वह अपने दर्शन मात्र से धन्य

0: इसकी उत्पत्ति की पौराणिक कथा भी अत्यंत अर्थगर्भी और प्रासंगिक है। इन्हीं जनश्रुतियों के आधार को मजबूत करते हुए डिंडौरी गांव के श्री अरविंद नारायण पाराशर।
1: जनश्रुतियों के आधार पर अमरकंटक जो नाम अभी हम लोग सुना करते हैं, ये अपभ्रंश होना चाहिए, क्योंकि अमरकंटक का मूल नाम अमरकंठ है और यह शंकर जी के उस नीलकंठ को स्मरण कराता है जिसके जरिए जहर पी करके भी वे अमर हैं। इसीलिए यह भी जाहिर होता है कि अमरकंटक, तथाकथित अमरकंटक शंकर जी की तपस्थली है। और एक बार जब वे अपने तप में इतने अधिक लीन हो गए कि प्रेमाश्रु बहने लगे, तो एक एक अलग अलग प्रेमाश्रु एक एक जलधारा के रूप में बह निकला, एक पूर्व की ओर और दूसरा पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर बही जलधारा नर्मदा और पूर्व की ओर बही हुई जलधारा सोन के नाम से प्रसिद्ध।
0: जबलपुर के समीप धुआंधार और भेड़ाघाट के जलप्रपात के दृश्य नर्मदा के यौवन के ही तो प्रमाण है। विश्व प्रसिद्ध धुआंधार यदि नर्मदा का विस्फोटक उल्लास है, तो भेड़ाघाट उसके आत्मसंयम की निशानी। नर्मदा को जीवनदायिनी प्रतिपादित करते हुए जबलपुर के अमृतलाल जी बेगर।
2: बरमान घाट का मेला नर्मदा तट पर भरने वाले मेलों में सबसे बड़ा है। होशंगाबाद के घाट हमारे देश के सर्वोत्तम घाटों में से हैं। यहाँ अंधकार में नर्मदा में दीप छोड़ती स्त्रियों का दृश्य हृदय पर अमिट छाप छोड़ जाता है। हमारे देश की इस प्राचीनतम नदी पर कई नवीनतम बांध बन रहे हैं। ये बांध होंगे पानी के रिजर्व बैंक। जब चाहो जितना चाहो पानी ले लो, नर्मदा का भंडार सदा भरा रहेगा। नर्मदा सच्ची अर्थों में माता बनेगी। नर्मदा कभी हमारे देश को दो हिस्सों में बांटती थी, आर्यावर्त और द्रविड़ देश के बीच की विभाजन रेखा थी। बाद में यही नर्मदा उत्तरापथ और दक्षिणापथ की संस्कृतियों की मिलन रेखा बनी और अब यही होगी मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा। नर्मदा तो बस नर्मदा है, जैसा भव्य उसका अतीत है वैसा ही उज्ज्वल उसका भविष्य है। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे।

नर्मदा की पूर्वी और पश्चिमी घाटी में गौंड, बैगा, कोरकू और भील जैसी अनेक जनजातियां आज भी नर्मदा के सघन विरल वनों और उबा खाबड़ घाटियों को अपनी बांसुरी और मांडल से गुंजाती रहती हैं।

नर्मदा के पश्चिम घाट के आदिवासी मुख्यतः भील और भीलाला है, जो झाबुआ, अलीराजपुर और गुजरात के सीमावर्ती जिलों में सूखी जटाओं की तरह नीरस और नंगी पहाड़ियों के बीच कंकरीली पथरीली जमीन में शताब्दियों से जीवन यापन कर रहे हैं।

पूर्वी छोर पर बसे बैगाओं का जीवन अपने आप में मोहक है। प्रशस्त ललाट, बढ़े हुए केश, चेठी पर लटकता हुआ चूड़ा, कमर से लिपटा हुआ कोपिन, कंधों पर रखा हुआ धनुष और कुल्हाड़ी, बांस के टप्परों पर मिट्टी के पलस्तर वाले घर और जंगलों की निर्द्वंद चुप्पी में जब ये अपनी टिंकी और मांदल उठाकर हरेली, दशहरा, नवाखाना या विदुरी का उत्सव मनाते हैं तो उल्लास से थिरक उठते हैं। नर्मदा तो नर्मदा, पूरा वन जैसे संगीतमय हो।

0: बैगा जाति का विस्तृत वर्णन करते हुए डॉक्टर नित्य उपाधीक्षित।
1: मंडला जिले की समस्त जातियों के बीच सबसे प्राचीनतम जाति बैगा है और इस जाति का निवास स्थान मेकल शैलमाला है जो कि नर्मदा नदी का उद्गम क्षेत्र है। मेकल शैल मालाओं में अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां होती हैं। इसका परिणाम ये होता है कि घने जंगलों में रहने के कारण ये वहाँ की वनस्पतियों से जड़ी बूटियों से सुपरिचित हो जाते हैं और असाध्य रोगों में उनका प्रयोग करते हैं। जब कभी ये नीचे आते हैं तो लोग ऐसा कहा करते थे कि बैदगा आ गया। मंडला के पूरी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ है, वहाँ पर गाला गाली परंपरा है, तो जब भी बैगा नीचे जाते थे तो उन्हें कहा जाता था कि बैदगा आ गया, अर्थात दवा देने वाला आ गया। बाद में कालांतर में प्रयत्न लाघव के नियम के अनुसार मानव की प्रति संक्षिप्त में बोलने की है तो दा वर्ण का लोप हो गया और बैदगा से बैगा बन गया। वास्तव में ये जाति औषधि उपचार और झाड़ा फूंक करने वाली एक कौम है जो झाड़ फूंक करती है और औषधि के द्वारा उपचार करती है। इस तरह की कृत्य करने वाले को बैगा कहा जाता था।

नर्मदा कहीं भी अकेली नहीं है। हिरन, बारना, कोलारमान, हथनी और सांग यदि उसके दाएं हैं, तो बर्नर, बंजर, दूधी, तवा, कंजाल और करजन जैसी 20 सहायक नदियां उसके बाएं हैं। भारत की अन्य नदियों की तरह ये पश्चिम से पूरब की ओर न बहकर पूरब से पश्चिम की ओर अरब सागर की दिशा में बहती है। 1312 किलोमीटर की यात्रा तय करती हुई जब ये भड़ौच या भृगु कच्छ क्षेत्र से होकर खंबात की खाड़ी में मिलने लगती है, तब ऐसा जान पड़ता है कि यह अमरकंटक वाली शर्मिली नर्मदा नहीं है,

0: जो अपने उद्गम पर गुल बकावली के फूलों की सहज मुस्कुराहट बिखेरती है। यहाँ न तो नर्मदा का मेघ शेष बसता है, न उसका चिरपरिचित उद्वेलनकारी प्रवाह। निमाड़ अंचल के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री राम नारायण उपाध्याय नर्मदा के नाम की व्याख्या करते हुए कहते हैं,
1: यह हमारा जो निमाड़ अंचल है, यह विंध्य और सतपुड़ा से रक्षित है और नर्मदा इसके बीच जीवन रेखा की तरह बहती है। गंगा जो है वो मैदानी इलाके से बही है, लेकिन वो ज्ञान की नदी मानी जाती है, लेकिन नर्मदा तपस्या की नदी है। इसके किनारे ऋषियों ने तप किया है। इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता जो है वो यह है कि इसने चट्टानों को चीर कर अपना रास्ता बनाया, मुसीबत में से आगे बढ़ी है, संघर्ष किया है, रव किया, इसलिए इसका एक नाम रेवा है। रव जो करेगा वो रेवा होगी और जो आनंद देगी वो आनंददायी नर्म यानी आनंद दाय यानी देने वाली। तो नर्मदा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह रेवा भी है और नर्मदा भी है।

0: जहाँ एक ओर नर्मदा के किनारे ओंकारेश्वर, मंडलेश्वर और महेश्वर जैसे तीर्थ नगर बसे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर जबलपुर और भड़ौच जैसे औद्योगिक तीर्थ भी। नर्मदा का अंचल उन्नत खेती, मछली उद्योग और स्वादिष्ट फलों के लिए भी जाना जाता है। हमने नर्मदा के किनारे खेती करने वाले कृषक, मछली पकड़ने वाले मछुआरे और फलदार वृक्षों की खेती करने वाले कृषकों से बातचीत की। कृषक श्री प्रेम शंकर चौधरी।
1: मैं तो ये कहूंगा कि होशंगाबाद और आजू बाजू के जितने भी नदी से जुड़े हुए गांव हैं, वो एक बहुत बरदान साबित है। और नर्मदा का कछार तो मशहूर है हमारे देश में, तो यहाँ गेहूं चना की खेती शुरू से ही होती आई है और अच्छी होती है। और यहाँ की जमीन भी बहुत उपजाऊ है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ फल भी बहुत अच्छे हुए हैं।
0: और ये है मछली पकड़ने वाले डल्लू मंसूरिया।
2: अच्छा ये बताइए, आप जो काम करते हैं मछली निकालने का
3: जी,
2: तो इससे आपके परिवार की गुजर बसर हो जाती है?
3: जी हाँ, हो जाती है।
2: अच्छा,
3: जब से हम ये यानी होश संभाला, हमने जब से हम धंधा करते चले आ रहे हैं, जब से हम देख रहे हैं अच्छी अपनी हो जाती है बसर। घर में 10-12 जन हम, तो हम आराम से दो आदमी हैं जो शिकार करते हैं मछली का धंधा, तो उन्हें पूरे 10-12 आदमी को पूरा हो जाता।
2: नर्मदा नदी के कछार में जो मछलियाँ मिलती हैं वो कौन कौन सी?
3: नर्मदा जी के कछारों में मछली मिलती है, बारस मछली मिलती है, पाढ़न मिलती, रेहू मिलती है, और एक डीगर मछली मिलती है, और यानी बहुत सी मछली है नर्मदा जी की, जितनी मछली सब मिलती।

0: नदी का वर्णन हो और नाविक की बात ना हो तो ये कुछ अधूरा ही लगता है। लोगों को पार लगाने वाले नर्मदा के नाविक आज खुद मझधार में हैं।
1: आपका नाम बताइए।
2: खुशीलाल।
1: खुशीलाल जी, आप कितने सालों से नाव चला रहे हैं?
2: नाव का धंधा साहब मैंने 30 साल चलाओ और अब छोड़ दिया। अब पेट पालन नहीं हो, बड़े बड़े आदमी लेने लगे ठेका, हम लोगों की टांग नहीं पूरती।
1: हाँ, तो इन दिनों आप क्या कर रहे हैं?
2: बेगर रोजगारी बैठे बाड़ियों का धंधा करते हैं, तो खरबूज तरबूज की बाड़ियाँ बह जाती है हम लोगों की, पानी छोड़ देते बंधान वाले।
1: आपका नाम बताइए।
3: दयाचंद।
1: आप नाव का ही धंधा कर रहे हैं अभी?
3: और नाव का धंधा सब गया साहब, छोड़ा दिया। बड़े बड़े लंबे ठेकेदार लाखों से लेने लगे और हम छोटे परिवार के आदमी हम ठेका क्या ले सकते हैं। हमने जैसे तैसे लोगों से कर्ज लिया, तो वो कर्ज क्या लिया, तो अब वो कर्ज लिया तो लोग बाग बंधान छोड़ने लगे साहब। अब बंधान छोड़ने लगे तो उन्हें हमें लाले

0: दे दी सरकार ने कि हम आपको मुआवजा देंगे, तो हमने चलो आत्मा को शांति लगी। अब वो मुआवजा के विषय में कहने लगे, वो मुआवजा भी अपना कैंसिल कर दिया।
1: नर्मदा का कछार ही नहीं, यहाँ तक कि इसका पत्थर भी सैकड़ों लोगों के लिए जीवन यापन करने में सहायक है। नर्मदा का संगमरमर भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में प्रसिद्ध है। भेड़ाघाट शिल्पकार संघ के अध्यक्ष के शब्दों में

0: मानव सभ्यता में नर्मदा की अपरिमित शक्ति के प्रति इतना विश्वास है कि वो इसकी सहायता से एक नए भारत का निर्माण करने का सपना देख रही है। नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर बंधने वाले सैकड़ों छोटे मझोले और बड़े बांध पूरा हो जाने के बाद आसपास की बाढ़ और अकाल की चपेट में आने वाले अंचलों को खुशहाली और हरियाली से भर देंगे। किंतु नर्मदा पर बांधे जाने वाले इन भीमकाय विराट बांधों को लेकर लोगों के मन में आशंका, भय और उत्तेजना भी कुछ कम नहीं है। ये आशंका भारत के उन पर्यावरणवादियों और स्वयंसेवी संगठनों की है जिन्होंने बड़े बांधों के विरोध में जन आंदोलन छेड़ रखा है। इसी सिलसिले में हमने बाबा आमटे से बातचीत की।
1: जो हमारा आंदोलन नर्मदा के खिलाफ चल रहा है वो खाली ये बड़े बांधों के खिलाफ आंदोलन नहीं है, ये तो चेंज ऑफ लाइफस्टाइल जिसको कहते हैं, हम कैसे बर्ताव करें, हम रहे कैसे, करप्शन कैसा हो रहा उसके खिलाफ है, वैसे इंटरेस्ट के खिलाफ है, जो रिश्वत लाच ये जो कर उनके खिलाफ है। स्ट्रगल अगेंस्ट नर्मदा बिग डैम्स हैज बिकम अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स। इसीलिए यहाँ घाटी के लोग कहते हैं कि हम जल समाधि ले लेंगे, यहाँ ड्राउन एंड डाइ स्कोर्स खोलेंगे, लेकिन अपनी जमीन को छोड़ेंगे नहीं।
2: अब इन बातों के बारे में आपके दिमाग में क्या विकल्प है?
1: छोटे छोटे बांध बनाते उसकी व्याख्या बनती, मीडियम साइज बांध क्या होती उसकी व्याख्या बनती, जहां नर्मदा के ऊपर बांध नहीं बांध सकते वहां हमारे यहाँ कोयला जाता था, वहां थर्मल स्टेशन बनते, और सब जगह जैसे खरगोन जिले ने एक पैटर्न दिया है, लाखों पंप लगते हैं, लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स लगती और अनाज कम नहीं पकता, बिजली भी महंगी नहीं होती।

0: एक ओर गुजरात की जनता का पीढ़ियों से चला आया बाढ़ और सूखा, दूसरी ओर बड़ी भारी आबादी का अपनी परंपरागत जमीन से विस्थापन और पर्यावरण विनाश आसन्न संकट। हमारी नर्मदा भी असमंजस में पड़ गई है, किंतु नर्मदा पुत्रों का हौसला फिर भी कम नहीं हुआ है। नए भविष्य की आशा में वे मध्य प्रदेश के अपने भावती गांव से बड़ौदा के निकट गुटाल गांव में आकर नए सिरे से बसने लगे हैं। शताब्दियों से मानव सभ्यता का ये क्रम यहाँ नए संकल्प के साथ अब भी जारी है।
1: मेरा नाम है बिहारी लाल, खरगोन जिला, तहसील बड़वानी, ग्राम भौती।
2: ग्राम भौती,
1: हाँ।
2: तो यहाँ आकर कितने दिन हुए आपको?
1: यहाँ करीब हो गए हमको, मतलब 4 महीने।
2: वहाँ पर ग्राम भौती में आपके पास कितनी जमीन थी?
1: मेरे पास वहाँ पर कुछ जमीन नहीं थी।
2: अब आपके साथ यहाँ पर कौन कौन आया है परिवार में?
1: मेरे 2 लड़के और 1 मैं, 3 है मतलब।
2: आपके रहने की क्या व्यवस्था है
1: यहाँ पर? रहने के लिए मतलब अभी 3 सेट बना के दिए हैं, मतलब तो 3 सेट में रह रहे हैं अभी।
2: अच्छा, खेती के लिए जमीन वगैरह?
1: हाँ, खेती के लिए जमीन 5 एकड़ जमीन मतलब प्रति एक आदमी को दी गई है। मतलब तो मेरे घर में जैसे 3 सदस्य हैं, तो मेरे को 15 एकड़ जमीन, मेरे 2 बच्चे और 1 मैं, ऐसे मिला के 15 एकड़ जमीन मिली है। उसके अलावा और हमें मतलब 5,000 रुपये बैल जोड़ी के लिए अनुदान दिया है, और 375 रुपये आपने को मतलब निर्वाह भत्ता दिया जा रहा है।
2: काका, आपका नाम बताइए।
3: मेरा नाम शुभ नाम केवल सिंह वास्कल है।
2: कितनी एकड़ जमीन आपके वहाँ पर थी?
3: 5 एकड़ 80 डिसीमल।
2: अच्छा, तो वो जो खेती संभाल रहे हैं वो डूब में नहीं आ रही क्या?
3: डूब में तो आएगी, पर अभी नहीं आएगी।
2: अच्छा, कितनी एकड़ यहाँ जमीन आपको मिली?
3: 15 एकड़।
4: मेरा नाम नादेश्याम सोलंकी। 5 भाई और 1 पिताजी, कुल मिला के 6 जना है।
2: वहाँ पर आपके पास कितनी जमीन थी?
4: सिर्फ 1 एकड़ जमीन थी।

0: गुजरात में बनाए जा रहे सरदार सरोवर ने जहां पर्यावरणवादियों और डूबने आने वाले लोगों के मन में एक भय पैदा कर दिया है, वहीं दूसरी ओर गुजरात राज्य के लोगों को सरदार सरोवर में उज्जवल भविष्य की किरणें दिखाई देने लगी हैं। गुजरात राज्य के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर सी.सी. पटेल,
1: गुजरात पिछले कई सालों से बाढ़ और अकाल से त्रस्त प्रदेश रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो आदमी और पशुओं के पीने के पानी की है। कहीं कहीं पानी का स्तर 30 मीटर नीचे चला गया तो कहीं कहीं 200-300 मीटर नीचे जा चुका है। सन 1985-86 में तो 16 लाख पशु चारा और पानी की तलाश में 400 किलोमीटर तक भटकते रहे। जहां ऐसी दशा हो वहां की जनता अगर नर्मदा के पानी को अमृत की तरह पाना चाहे तो क्या आश्चर्य है। सरदार सरोवर पूरे गुजरात के लिए नए जीवन और नए युग की शुरुआत है। जबकि बांध बनने से ज्यादा 1 लाख आबादी विस्थापित होगी, जिसे हम बेहतर और सुरक्षित स्थिति में योजनाबद्ध ढंग से बसा रहे। इस बांध के बन जाने से गुजरात की जनता के जीवन में नई रोशनी आ जाएगी। पीने का पानी, सिंचाई, विद्युत ऊर्जा का जो लाभ मिलेगा वह तो मिलेगा ही। यहाँ के लोग भयानक बाढ़ और अकाल की चपेट में से भी बच जाएंगे। अकालग्रस्त इलाके हरे भरे हो जाएंगे। सरदार सरोवर भले ही गुजरात की धरती पर बन रहा हो पर इसका लाभ राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को भी मिलने वाला है।
0: आपके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं?
1: सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण मुद्दा विस्थापितों का है। इस बारे में आपको बताना चाहता हूं कि हमारी पुनर्वास योजना दुनिया में अद्वितीय है। जिसके पास जमीन नहीं है उसे भी 5 एकड़ और जिसके पास जमीन है उसे भी हम कम से कम 5 एकड़ दे रहे हैं। अगर किसी संयुक्त परिवार में 5 वयस्क जवान बेटे हैं तो प्रत्येक को 5 एकड़ और खेती लायक जमीन देंगे।
0: ये बात सही है कि जब जब भी विकास की बात हुई कुछ विरोधाभास उभरे हैं, कहीं प्राकृतिक रूप में तो कहीं मानवीय संवेदनाओं के धरातल पर। जहां एक ओर गुजरात पूरे संकल्प के साथ सरदार सरोवर बनाने में कृत संकल्प है, वहीं मध्य प्रदेश भी इंदिरा सागर बनाने की दृढ़ प्रतिज्ञा किए हुए है। मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी विकास मंत्री श्री शीतला सहाय,
2: मध्य प्रदेश जुलाई 1990 तक 2 मत में था, बने या ना बने। यद्यपि ना बने ऐसी कोई गुंजाइश अब है नहीं, समूचा प्रकरण देखा, अध्ययन किया तो हम इस निर्णय पर पहुंचे कि नर्मदा सागर, जिसे इंदिरा सागर भी कहते हैं, बनाने की सिवाय और कोई हमारे पास चारा नहीं। इस बार बजट प्रोविजन भी हमने 180 करोड़ का किया है, 20 करोड़ और उसको मिल जाएंगे, इस तरह से 200 करोड़ के करीब खर्च होगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना में हमने 1000 करोड़ रुपए रखे हैं। कब तक लगभग ये पूरा हो जाएगा? अब 9वीं पंचवर्षीय योजना तक तो जाएगा।
3: नर्मदा सरोवर के बारे में जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?
2: जब जब भी विकास के काम हुए हैं उस समय कहीं ना कहीं से कोई ना कोई विरोध आया है। भाखड़ा नांगल बना हो या इंदिरा नहर बनी हो, उसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई विरोध था। और इसलिए इन पर्यावरणवादियों से मेरा निवेदन है कि वो अपने स्टैंड पर एक बार फिर से विचार करें।
0: पिछले 30-40 वर्षों से भारत की विकास नीति का ही एक हिस्सा है नर्मदा घाटी विकास, जिसके अनुसार पूरे अंचल में नहरों का जाल सा बिछ जाएगा।

पानी की सुविधाएं सुलभ हो सकेंगी। हमारे किसान ना तो बाढ़ की चपेट में आएंगे, ना सूखा और अकाल की मार खा खा कर आजीविका की तलाश में दर दर भटकेंगे। नर्मदा और उसकी सहायक नदियां अपने छोटे बड़े बांधों के गहने पहनकर लहलहाते सीवानों में बदल जाएंगी और शत शत कंठों से फूट पड़ेगा ये गीत।

इस जगत का पालनहार अपने भक्तों से जैसे प्रेम करता है, वैसे ही अपने भक्तों की परीक्षा भी लेता है। हर भक्त के लिए प्रभु के दरबार के द्वार हमेशा खुले रहते हैं, मगर ईश्वर तक पहुंच पाना आसान काम नहीं। परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हम पूजन, अर्चन, भजन, कीर्तन, नाम सुमिरन, उसका मनन चिंतन करते हुए आराधना के अलग अलग मार्गों का सहारा लेते हैं, मगर ये सब करते हुए भी जब ईश्वर का साक्षात्कार ना हो तो भक्त हरि से शिकायत के स्वर में याचना करता है, मैं कौन सी राह अपनाऊं कि प्रभु तेरे दर्शन हों।

मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा।

0: यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि हिमवान पत्नी मीना और पार्वती जी को एक ही समय में एक से स्वप्न आए। दोनों के स्वप्नों में भगवान शिव शंकर ने उन्हें दर्शन दिए। मीना को शिव एक कुलहीन भभूतधारी श्मशान निवासी के रूप में दिखाई दिए और दूसरी ओर देवी पार्वती के समक्ष वे एक तेजोमय

0: योगी के रूप में प्रकट हुए। मीना चिंतित और पार्वती प्रसन्न थीं। उधर महाप्रभो को तपस्या में लीन पाकर तारकासुर का उत्पात बढ़ने लगा। वो तीनों लोकों का स्वामी बन बैठा। देवताओं के लिए शिव पुत्र की उत्पत्ति अति आवश्यक हो गई। उन्होंने कामदेव और रति को शिव तपस्या भंग करने का कार्य सौंपा। तपस्या भंग होने से क्रोधित महादेव ने अपने तीसरे नेत्र की क्रोधाग्नि से कामदेव को ही भस्म कर डाला। अब प्रस्तुत है इसके आगे की कथा। रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: इसके बाद क्या हुआ सूद जी?
2: शौनक जी, देवी पार्वती का मन आत्मग्लानि से भर उठा। उसमें विरक्ति समाने लगी। उन्होंने शिव आराधना बीच में ही त्याग दी। परमपिता ब्रह्मा और भगवान विष्णु चिंतित हो उठे।
3: विधे, ये तो उचित नहीं हो रहा है। देवी पार्वती के यूं तपस्या त्याग देने से उन्हें शिव प्राप्ति कैसे होगी?
4: और शिव प्राप्ति के बिना पुत्र प्राप्ति भी तो संभव नहीं है।
5: आप दोनों ठीक कहते हैं विष्णुदेव और पुत्र नारद। निष्काम निष्पाप प्रभु के मन में उतरने का एकमात्र मार्ग उनकी आराधना ही है। उन पर किसी अन्य प्रकार का लोभ और मोह कार्य नहीं कर सकता। प्रभु को लोभ है तो अपने भक्तों की समस्या दूर करने का, मोह है तो भक्तों की भक्ति से।
4: नारायण नारायण। और देवी पार्वती के तपस्या त्याग से प्रभु इन दोनों से ही वंचित रह जाएंगे, फिर उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए प्रसन्न कैसे किया जाएगा?
5: पुत्र नारद।
4: आज्ञा परमपिता।
5: देवी पार्वती के मन में तुम्हारे प्रति बहुत सम्मान है। वो तुम्हें अपना गुरु मानती है। वे तुम्हारी आज्ञा कभी नहीं डालेंगी।
4: तो परमपिता, इसके लिए मुझे क्या करना होगा?
5: तुम देवी पार्वती के पास जाओ। उनके मन से विरक्ति भाव निकालकर उन्हें पुनः शिव आराधना के लिए प्रेरित करो। इसी में समस्त जगत का कल्याण है पुत्र।
4: नारायण नारायण। जगत कल्याण के लिए मैं तो सदा तत्पर रहता हूं देव। पार्वती शिव के शुभ मिलन के लिए आपके आशीर्वाद से अथक प्रयास करता ही रहूंगा।
3: जाओ भक्त नारद, तुम्हें अपने प्रयास में सफलता प्राप्त हो।
4: नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण।
6: प्रणाम मुनि नारद।
4: अरे ये क्या देवी पार्वती, आपकी वाणी में ये कुमलाहट कैसी? और फिर ये तो आपकी पूजा का समय है।
6: मैंने पूजा आराधना त्याग दी है ऋषिवर।
4: त्याग दी है, परंतु क्यों? लक्ष्य के इतने निकट आकर तपस्या त्याग दी?
6: हमें अब कोई लक्ष्य नहीं दिखता ऋषिवर, और लक्ष्य बनाए भी तो किस आशा से? जब देवाधिदेव क्रोध में आकर ब्रह्मा पुत्र कामदेव तक को भस्म कर सकते हैं, तो हम तो एक साधारण मानवी हैं। हमें भस्म करने के लिए उन्हें अपना तीसरा नेत्र खोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
4: नारायण नारायण। देवी पार्वती, ये आपने क्या तुलना कर डाली? आप क्यों भूलती हैं, इस साधारण मानवीय शरीर में स्वयं शिव प्रिया शिवा का वास है। शिव तो आप पर क्रोधित हो ही नहीं सकते। अगर होते तो कामदेव के साथ साथ आपके इस मानवीय शरीर को भी भस्म कर डालते।
6: मैं आपकी बात का तात्पर्य नहीं समझी मुनि श्रेष्ठ।
4: महादेव कामदेव के जिस कर्म से क्रोधित हुए, उसके कर्म फल का पात्र तो आप ही बनती, परंतु महादेव के क्रोध की ज्वाला ने आपको छुआ था नहीं। उनके मन में कुछ तो है। उनकी लीला वही जाने।

0: तो क्या महादेव का हृदय जीत पाना अब भी संभव है?
1: नारायण नारायण, त्याग और तपस्या से क्या संभव नहीं होता देवी पार्वती। आप अपने पिता का घर त्यागिए, गंगोत्री में उसी स्थान पर जाइए जहां महादेव ने कामदेव को भस्म किया था। मन में ये दृढ़ प्रतिज्ञा लेकर पुनः तपस्या आरंभ कीजिए कि आप शिव के अतिरिक्त किसी और का पति रूप में वरण नहीं करेंगी।
0: जो आज्ञा गुरु नारद मुनि। परंतु गुरुदेव, इस बार आप मुझे शिव आराधना के लिए कोई मंत्र दें।
1: अवश्य देवी अवश्य। नमः शिवाय। देवी पार्वती, ये पंचाक्षर मंत्र सब मंत्रों का राजा है। इसके श्रवण मात्र से ही महाप्रभु प्रसन्न हो जाते हैं।
0: जैसी आपकी आज्ञा महर्षि नारद।
1: नारायण नारायण।
2: और परम ज्ञानी शौनक जी, इस प्रकार देवी पार्वती एक बार फिर शिव आराधना में लीन हो गई। आभूषणों और सुंदर वस्त्रों का त्याग कर उन्होंने वलकल धारण कर लिया। अपनी सखियों जया और विजया के साथ गंगोत्री जा पहुंची।
3: परंतु महाभाग सूचि, सुना है वहां की सारी वनस्पति शिव की क्रोधाग्नि में भस्म हो गई थी। सभी पशु पक्षी भी वो स्थान छोड़ गए थे।
2: शौनक जी, देवी पार्वती और उनकी सखियों ने वहां अनेक सुंदर और पवित्र पौधे लगाए। देखते ही देखते उस प्रदेश में हरियाली लहलहा उठी। सब पशु पक्षी लौट आए और फिर आरंभ हुई ऐसी घनघोर तपस्या जो महामुनियों के लिए भी दुष्कर थी।
0: नहीं माते, और कोई मार्ग नहीं है। एक महातपस्वी का हृदय जीतने के लिए महातपस्या की आवश्यकता होती है। एक विरक्त को पाने के लिए स्वयं विरक्त होना पड़ता है। तो क्या एक कपाली को पाने के लिए कपालनी का वेश धारण करना होता है? हाँ माते, करना होता है। पति परमेश्वर होते हैं, पत्नी को पति के अनुरूप ही स्वयं को ढालना होता है। और फिर सदाशिव तो स्वयं परमेश्वर हैं।
4: परंतु पुत्री, तू अपने को तो देख, कितनी क्षीण पड़ गई है तू।
0: माते, शरीर अवश्य क्षीण पड़ गया है, परंतु आत्मा बलशाली हो गई है। तपस्या सदा आत्मबल बढ़ाती है माते। और माते, ये आप ही की शिक्षा है कि दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति के लिए दुष्कर परिश्रम करना पड़ता है। वही तो मैं कर रही हूं। माते, अपने सुकोमल नारी हृदय को मेरे अभीष्ट मार्ग का अवरोधक ना बनने दें।
4: परंतु पुत्री, वो भगवान
0: वो अवश्य आएंगे माते। वो भक्त वत्सल है, भक्तों को कभी निराश नहीं करते, ये मेरा अधिक विश्वास है। जाइए माते, निश्चिंत होकर जाइए। आशीर्वाद दीजिए कि आपकी पुत्री अपने लक्ष्य प्राप्ति में सफल हो।
5: हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है पुत्री, सफल भव।
0: शिव प्राप्ति के लिए मुझे और उग्र तपस्या करनी होगी। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।

0: ब्रह्मदेव, विष्णु जी।
1: जी महाप्रभु।
0: इतने चिरकाल पश्चात आपने दर्शन दिए, सब कुशल मंगल तो है?
1: देवाधिदेव, कष्ट में पड़ा भक्त सर्वप्रथम आप ही का स्मरण करता है, और आप तुरंत अपने भक्त का कष्ट दूर कर देते हैं। आप तो जानते ही हैं देव, तीनों लोकों पर तारकासुर नामक विपदा व्याप्त है। उधर देवी पार्वती के महातप से त्रिलोकी संतप्त हो उठी है, आपके भक्त संकट में है महाप्रभु।
0: विष्णु हरे, आपका क्या विचार है, ये संकट कैसे दूर किया जा सकता है?
2: महादेव, समस्या का निराकरण आपसे उत्तम कौन जान सकता है, परंतु आपका आदेश है इसलिए विचार व्यक्त करता हूँ। महाप्रभु, आप देवी पार्वती का पाणी ग्रहण कीजिए, आपके औरस पुत्र से तारकासुर का भी नाश हो जाएगा और महादेवी पार्वती की तपस्या भी सार्थक हो जाएगी, जगत का संताप भी मिट जाएगा।
0: परंतु देवगण, देवी पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार करते ही त्रिलोकी फिर सकाम हो उठेगी। अभी सब निष्काम भाव से परमार्थ के पथ पर चल रहे हैं, और फिर कामो ही नरकायेव तस्मात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहो मोहाच् भ्रंशते तपः। काम से क्रोध होता है, काम से क्रोध, और क्रोध से मोह, और मोह से तपस्या भंग होती है। इसलिए आप सब देवताओं और ऋषियों को काम और क्रोध का त्याग कर जन कल्याण के कार्य में तत्पर रहना चाहिए।
1: हे भक्तवत्सल महादेव, हम लोक कल्याण के हित में ही तो आपसे ये प्रार्थना कर रहे हैं। आपने हमारे ही अनुरोध पर देवी सती से विवाह किया था, इसलिए क्योंकि कुछ भावी असुर मात्र आपके पुत्र के हाथों मारे जा सकते थे। प्रभु, तारकासुर उनमें से ही एक है।
0: और उस विवाह का परिणाम भी आपने देख लिया था ब्रह्मदेव।
1: महाप्रभु, कहने की धृष्टता कर रहा हूं, परंतु मात्र एक कुपरिणाम सृष्टि का नियम नहीं बन जाता। नियम बनता है सुपरिणाम, जो सबको सुख प्रदान करने वाला होता है। और प्रभु, इस सबका सुपरिणाम यह है कि देवी शिवा ने ही देवी पार्वती के रूप में पुनः अवतार लिया है, मात्र आपके लिए, ताकि आपके द्वारा महाजन कल्याण के कार्य सिद्ध हो। आपका औरस पुत्र सबको इन असुरों से मुक्ति दिलाए।
0: ब्रह्मदेव, विष्णु जी, स्त्री के संग को मैं सबसे बड़ा कुसंग समझता हूं। स्त्री एवं संतान के बंधन में बंधा व्यक्ति कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। फिर मैं ठहरा वीतरागी सन्यासी, मुझे इन बंधनों से क्या लेना देना? परंतु मैं अपने भक्तों को निराश भी नहीं कर सकता, इसलिए उचित अनुचित सभी कार्य करता हूं।
1: महाप्रभु, इसी कारण अयथोचित कर्ता के रूप में आपकी पूजा होती है।
0: मेरे हृदय में विवाह की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी जन कल्याण के लिए मैं ये कार्य करूंगा। मैं पुत्र उत्पत्ति के लिए गिरिराज पुत्री पार्वती से विवाह करूंगा। आप सब जाएं, मुझे विचार करने का समय दें।
3: जैसी आज्ञा देवाधिदेव।
4: हम धन्य हुए, महादेव कितने विशाल हृदय के स्वामी हैं।
5: अब हमारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे।
4: आइए।
0: मेरी तपस्या के भंग होने का कारण देवी पार्वती की ही तपस्या है, किंतु मुझे उनके तपस्या भाव की परीक्षा लेनी होगी।

0: देवी पार्वती, आपके मुख पर एक बार फिर निराशा की भाव उमड़ आए हैं। क्यों देवी?
1: क्या करूं सखी जया, 3000 वर्ष की इस तपस्या के पश्चात भी मैं अपने आराध्य का मन नहीं जीत पाई हूँ। क्या माते ठीक कहती थी कि शिव पूर्णतः विरक्त हो गए हैं? क्या मुझे उनका संग नहीं मिलेगा?
0: क्यों नहीं मिलेगा देवी, आपकी तपस्या निरर्थक नहीं जा सकती।
1: मन करता है जया, इस अग्नि में देह त्याग कर अपनी यह लीला ही समाप्त कर डालूं।
0: नहीं देवी, धैर्य न त्यागे, प्रभु अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे।
2: भिक्षान देही, भिक्षान देही।
1: देख तो जया, आश्रम में ये कौन तेजस्वी वृद्ध सन्यासी आए हैं? उन्हें आदर के साथ यहाँ ले आ।
0: अभी लीजिए देवी। आइए मुनिवर, इधर आइए।
1: प्रणाम द्विज श्रेष्ठ।
3: प्रणाम।
1: आसन ग्रहण कीजिए।
3: देवी, तुम कौन हो? इस निर्जन वन में किस लिए तपस्या कर रही हो? क्या तुम किसी ऋषि की पत्नी हो जो तुम्हें छोड़ कहीं चला गया है? या तुम स्वयं गायत्री, लक्ष्मी या सरस्वती हो?
1: नहीं मुनि श्रेष्ठ, मैं तीनों में से कोई नहीं हूँ। मैं पर्वतराज हिमवान की पुत्री पार्वती हूँ। मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान चुकी हूँ। ते उद्देश्य की पूर्ति के लिए ब्रह्मर्षि नारद के आदेश से यहाँ तपस्या कर रही हूँ।
3: देवी, मैं इन सब देवताओं और मुनियों को भली भांति जानता हूँ, और फिर नारद। अरे गिरिजा नंदिनी, आपने किसके कहने में आकर ये तपस्या कर डाली? उनके मन में कुटिलता का वास है, सदा छल कपट करके अपने परमार्थ साधते रहते हैं, अपने मोहक शब्दों से दूसरे को पथभ्रष्ट करते रहते हैं।
1: ये आप क्या कह रहे हैं मुनिवर?
3: नारद सदा दूसरों की बुद्धि में भेद पैदा करते रहते हैं। दक्ष पुत्रों को तपस्या के मार्ग पर डाल दिया, और अब आप जैसी सर्वगुण संपन्न देवी को पथभ्रष्ट कर रहे हैं।
1: मुनि श्रेष्ठ, मैं पर्वतराज की पुत्री हूँ। देवर्षि नारद में भी मेरा विश्वास पत्थर समान कठोर है। वो मेरे गुरु हैं। गुरु कभी अपने शिष्य को पथभ्रष्ट नहीं कर सकता। गुरुओं का वचन सत्य होता है। जो इसमें विश्वास नहीं करते, उन्हें यह लोक और परलोक में कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती।
3: गुरु के प्रति आपकी भावना जान बड़ी प्रसन्नता हुई देवी पार्वती। परंतु क्या आप यह भी जानती हैं कि जिन्हें आप वरना चाहती हैं, उनका स्वरूप कैसा है? उनका तुम्हारा क्या मेल?
1: आप क्या कहना चाहते हैं मुनिवर, स्पष्ट करें।
3: देवी, कहां तुम चंद्रमुखी,
2: कहां वो पंचमुख,
3: कहां तुम्हारे हिरणी जैसे बड़े बड़े नेत्र,
2: और कहां वो भयंकर त्रिनेत्रधारी?
3: तुम्हारे शरीर पर दिव्य आभूषण शोभायमान होते हैं,
2: और कहां झुंड के झुंड सर्प
3: शिव के शरीर से लिपटे रहते हैं।
1: मुनिवर,
3: कहां मृदंग की मधुर ध्वनि,
2: कहां डमरू की क्रूर डमडम।
3: आप अपने शरीर पर चंदन का लेप करती हैं, और वे सदा
2: चिता की भस्म लगाए रहते हैं।
1: और उसी चिता की भस्म के भूमि पर गिरते ही सभी देवता और मानव उसे अपने मस्तक पर लगाने को आतुर हो जाते हैं।
3: वे कुलहीन हैं, जातिहीन हैं।
1: जो स्वयं निर्गुण ब्रह्म हैं, अजन्मे हैं, उनकी जाति कैसे हो सकती है?
3: वे अशिक्षित हैं, उनका कोई गुरु नहीं है।
1: जो भगवान सदाशिव समस्त विद्याओं के आधार हैं, उन्हें विद्या से क्या काम? वही तो सबके गुरु हैं।
3: वे निर्धन हैं, उनके पास धन होता तो अर्धनग्न क्यों रहते? सवारी के नाम

0: पर उनके पास एक बूढ़ा बैल है, ना उनके पास आवास है ना निवास।
1: विप्रवर, जिनके समक्ष आठों सिद्धियां आकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए नृत्य करती हैं, उनके लिए किसी भी वस्तु की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, परंतु वो भोगी नहीं योगी हैं।
0: देवी पार्वती, छोड़िए ये तर्क वितर्क। शिव आपके योग्य नहीं हैं। मैं आपका विवाह वैभव संपन्न विष्णु, वेद ज्ञाता ब्रह्मा या किसी भी अन्य देवता से करवा सकता हूँ।
1: मुनिवर,
0: वे सदा आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे।
1: मैंने तो समझा था कि आप कोई ज्ञानी महात्मा हैं, मुझे शिव प्राप्ति का आशीर्वाद देने आए हैं, परंतु आप तो शिव निंदक निकले। देवी सती भी अपने पति की निंदा सहन नहीं कर सकी और अग्नि में होम हो गई। मैं शिव पत्नी तो ना बन सकी, परंतु उन्हें पति रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। मैं भी अभी तुरंत इस अग्नि में अपने शरीर का दहन करती हूँ।
2: नहीं,
0: ठहरिए देवी, मेरी बात सुनिए, बहुत तीव्र अग्नि है।
1: देवी पार्वती, देवी आप ये क्या कर रही हैं? देवी, मैं पर्वत राज और माती मैंने को क्या उत्तर दूंगी? ये क्या, देवी पार्वती अग्नि में प्रवेश कर गई।
2: ये क्या हो गया? लेकिन ये क्या हो रहा है?
1: देवी की अग्नि प्रवेश करते ही अग्नि शीतल पड़ गई, देवी का शरीर स्वर्णिम कांति से प्रकाशित हो उठा है। देवी सकुशल है। विप्रवर, देवी सकुशल है। अरे अरे, ये सन्यासी कहाँ गए? ये सन्यासी तो स्वयं
0: पार्वती, नेत्र खोलो पार्वती।
1: महाप्रभु भगवान शिव शंकर, मेरी तपस्या सार्थक हुई।
0: पार्वती, मैंने बारंबार हर प्रकार से तुम्हारी परीक्षा ली, तुमसे उत्तम सहधर्मिणी मुझे प्राप्त नहीं हो सकती। आओ पार्वती, कैलाश हमारी प्रतीक्षा कर रहा है।
1: नाथ, मेरा अभी आपके साथ चलना संभव नहीं है और ना ही उचित है।
0: ऐसा क्यों पार्वती? हम चिरंतन पति पत्नी हैं, फिर ये बाधा कैसी?
1: बाधा नहीं महाप्रभु, सामाजिक नियम। स्मरण करें, सती रूप में आपने मुझसे शास्त्रोक्त विधि से विवाह संपन्न नहीं किया था। पिता दक्ष ने भी ग्रहों की पूजा नहीं की थी। इसका परिणाम हमारे समक्ष है।
0: तो आप क्या चाहती हैं देवी?
1: विवाह संपूर्ण वैदिक रीति से संपन्न हो। आप मेरे पिता हिमवान के पास मेरा हाथ मांगने आए, उनकी अनुमति से मेरा पाणि ग्रहण कर मुझे विदा कराकर कैलाश ले चले, तभी मैं आपके साथ चल पाऊंगी।
0: ऐसा ही होगा देवी पार्वती, ऐसा ही होगा।
3: और परम ज्ञानी सूत जी, इस प्रकार देवी पार्वती की कठोर तपस्या सार्थक हुई। देवताओं में हर्षोल्लास का वातावरण छा गया।
4: हां सूत जी, कितने अवरोधों के बाद उनका मनोरथ सिद्ध होने जा रहा था। फिर क्या हुआ सूत जी?
3: सृष्टि का संताप तुरंत समाप्त हो गया।

0: सबने चैन की सांस ली। देवलोक में महाप्रभु के विवाह की चर्चा व्याप्त हो गई। सब प्रसन्नता पूर्वक इस सुघटना की प्रतीक्षा करने लगे।
1: तो विवाह कब और कैसे संपन्न हुआ सूत जी?
0: इतनी शीघ्रता नहीं शौनक जी, देवी पार्वती की इच्छा थी कि विवाह संपूर्ण वैदिक और सामाजिक रीति से पूर्ण हो। सो उसके लिए सबसे पहले प्रभु शिव शंकर को हिमवान के घर जाकर पार्वती जी का हाथ मांगना था।
1: तो महाभाग सूत जी, क्या महाप्रभु ऐसा करने हिमवान के घर गए?
0: परम ज्ञानी सूत जी, इस रहस्य को हम अपनी अगली भेंट तक बचाए रखते हैं।
2: श्रोताओं, शिव महिमा के आज के प्रकरण की कथा शिव पुराण के रुद्र संहिता तृतीय खंड के 21वें अध्याय से लेकर 29वें अध्याय तक से ली गई थी।

प्रभु श्री राम भरत जी को विदा कर पहुंचते हैं पंचवटी, जहां पर 14 वर्ष बिताने का निर्णय लेते हैं। तभी सूपनखा वन में घूमते घूमते प्रभु श्री राम को देख मुग्ध हो उठती है और राम से विवाह करने का प्रस्ताव कुछ इस प्रकार से रखती है।

प्रभु श्री राम सूपनखा का आत्मनिवेदन न मानते हुए अपने भाई लक्ष्मण को इशारा करते हैं और भाई लक्ष्मण अपने प्रभु राम जी का आदेश पाते ही तीर से सूपनखा की नाक काट लेते हैं और उधर रावण के

दरबार में राग रंग उत्साह, जेहर देखा हर तरफ खाली वाहे वाह। इतने में रोवत उहां गैल सूप नखा आए, पड़ल रंग में भंग औ गैल सनाका छाए। और यह देख रावण अपनी बहन का हाल मारीच को समझा बुझाकर उसे स्वर्ण मृग के रूप में पंचवटी भेजते हैं।

मुड़ी पटके करे चिरौरी मामा के पिघलावें, मुड़ी पटके करे चिरौरी मामा के पिघलावें, गांव से काम बनाओ मल चाहे गांव का बात बतावें, गांव से काम बनाओ मल चाहे गांव का।

लक्ष्मण का समझाए के राम बढ़ौले पाँव, सीता लक्ष्मण रह गए पंचवटी के छाँव। सीता जी की मांग पूरी करने के लिए प्रभु श्री राम स्वर्ण मृग के पीछे चल पड़ते हैं और प्रभु राम का तीर लगने पर मारीच राम जी की आवाज़ में हाय लक्ष्मण पुकार उठते हैं। यह सुन सीता घबरा उठती हैं और गुस्से में जानकी जी लक्ष्मण को कठोर वचन कहते हुए प्रभु राम को खोजने के लिए वन की ओर भेजती हैं। उसके पश्चात साधु के वेश में रावण पंचवटी में सीता से भीख मांगने पहुंचते हैं।

लक्ष्मण रेखा पार करने पर रावण असली रूप धारण करके सीता का हरण करते हैं। अब राम लक्ष्मण पंचवटी पहुंचकर सीता को ना पाकर विलाप करते हुए घायल जटायु से मिलते हैं। गिद्धराज राम लक्ष्मण को सीता हरण की दिशा बताते हैं और सीता की खोज करते हुए दोनों भाई शबरी के आश्रम पहुंचते हैं। यह देख शबरी अत्यधिक भक्ति में लीन हो जाती हैं।

राजभवन और उसके बाहर नगर में भी उत्सव का रंग छाया हुआ है। राग रंग के उत्साह से भरे पुरवासी आते जाते दिखाई देते हैं और स्त्रियां नृत्य करती और गीत गाती दिखाई देती हैं।

हे जगदम्ब, मैं अपनी सेवा करे करी नहीं। हे देवी, अपने कोई अधिक धन सामग्री की कहीं अर्पियो नहीं, तो पण मुझ पर आप अनुपम स्नेह धरावो छो। एनु कारण ए छे के संसारमां कुपुत्र पैदा थई शके छे, पण माता क्यारे कुमाता बनती नथी।

अर्थात एक आलरात्रि श्याम कृष्ण वर्णवाळा कृष जेमा रक्तवाहिनी नसो देखाई रही छे एवा वृद्ध देखाता तो फैलायेल एवा वितत आकृति वाला जंगल जेवू जमनु मस्तक छे के जे अग्नि ज्वालाओ थी लपेटायेलू होय एम लागे छे। अति दीर्घा बहु लांबा अने भयंकर मुख धरावता एक काल रात्रि ए जाने आकाश ने मापवा तैयार न थया होय एवा एमने अमे प्रणाम करीए।

श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ गंगा के तट पर पहुंचते हैं। वहां केवट से गंगा को पार कराने के लिए अनुनय करते हैं। विस्मित नयनों से केवट श्री राम को निहारते हुए विनती करते हैं, प्रभु तुम तो जग के खेवनहार हो, तुम्हें कौन पार लगाए।

0: भवभञ्जन भवभञ्जन गुण भवभञ्जन गुण अपन राम
1: काही गुण बजत का

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।